90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। मित्रों, जिंदगी में हमेशा आपणे सांभळता आवीए छीए कि कोई पण कार्य एकला हाथे सफल पार थतुं नथी।

संत कबीरदास जी महाराज ने प्रेम की परिभाषा बताते हुए कहा, जंगल में एक हिरण और हिरणी का जोड़ा रहता था। एक दिन शिकारी उस जंगल में आया और शिकार पकड़ने के लिए जंगल में एक फंदा लगाया। इधर हिरण और हिरणी जंगल में हंसते खेलते विचरण करते हुए उस फंदे के पास आ पहुंचे और हिरण का पांव उस फंदे में फंस गया। जैसे ही उस हिरण का पांव उस फंदे में फंसा, वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते ही सारे जीव जंतु और जानवर जंगल में भाग गए, परंतु प्रेम के धागों से बंधी उसकी हिरणी उसको छोड़कर नहीं गई। उसके पास खड़ी होकर भगवान से करुणा पुकार करने लगी, भगवान के आगे रोने लगी, मारे पिया जीरा प्राण बचा, आ हिरणी हरिसु अर्ज।

पूद जंगल में रिड़ जा, हरी करे सो हो। ये प्यारी जो भगवान ने लिखा है वही होगा। तू मेरे लिए दुखी मत हो, कम से कम तू अपने प्राणों को बचाकर भाग जा। वे शिकारी अपने शिकार को ढूंढता हुआ आता ही होगा। वे हिरण बार बार हिरणी से निवेदन करने लगा, तू मेरे साथ अपने प्राणों को मत गवा प्यारी। पर वे हिरणी एक नहीं मानी और कहा कि हे प्रियवर, शिवाय तुम्हारे मेरा इस जंगल में क्या है। और भगवान के आगे रोते रोते पुकार करने लगी, हे प्रभु, तीन पांव पर खड़ी मृगली हरिसु हेत लगाए, और हरी रोज सिंहासन डोल्यो बावरिया ने विष खाए। हिरणी की आंखों में आंसू देकर और अपने प्रीतम के लिए अपार प्रेम देकर भगवान को बड़ी दया आई और उसकी पुकार सुनी, और धीरे धीरे हिरण के फंदे खुलने लगे। तब कबीरदास जी महाराज ने कहा,

बिरबल के पास सलाह लेने पहुंचा। अगले दिन बिरबल की सलाह पर हसन ने कहा, महाराज मैं प्रमाणित करने के लिए तैयार हूँ, पर पहले इन्हें यह परीक्षा देनी होगी। यदि इनकी बातों में सच्चाई है तो गर्म सरिये से इनके हाथ भी नहीं जलने चाहिए। यह सुनकर वो व्यक्ति डर गया। उसने कहा, एक बार मुझे फिर से देख लेने दीजिए, संभव है कि हार मेरे घर के किसी कोने में गिर गया हो। यह कहकर महाराज का अभिवादन कर वह भाग खड़ा हुआ। थी ना रोमांचक कहानी? यही है अकबर बिरबल की कहानियाँ। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए आरजे अंजलि के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर अकबर बिरबल की कहानियाँ। सर्दी का दिन था, अकबर ने घोषणा की, सरोवर के ठंडे पानी में जो व्यक्ति सारी रात खड़ा रहेगा उसे 1000 सोने की अशर्फिया पुरस्कार में दी जाएगी। एक गरीब व्यक्ति ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अगले दिन अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा कि बर्फीले पानी में आखिर रात भर वह कैसे खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने कहा, ठंडे से

0: अपना ध्यान हटाकर मैंने सड़क पर जल रही बत्ती पर अपना ध्यान टिका दिया। यह सुनकर अकबर ने क्रोधित होते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने धोखे से चुनौती पूरी की है, अतः यह पुरस्कार का अधिकारी नहीं है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने बिरबल से सहायता मांगी। अगले दिन बिरबल समय पर दरबार में नहीं आया। कारण जानने के लिए अकबर उनके घर गए। अकबर ने बिरबल को जमीन पर बैठा देखा। पास में ही आग जल रही थी और आग से 5 फीट ऊपर एक हड़िया में खिचड़ी टंगी हुई थी। अकबर ने पूछा, आग से हड़िया इतनी दूर है तो भला खिचड़ी कैसे पकेगी? बिरबल ने कहा, ठीक उसी तरह जैसे गरीब व्यक्ति को सड़क पर जल रही बत्ती से गर्मी मिली थी। अतः अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब व्यक्ति को पुरस्कृत किया। कैसी थी कहानी, जरूर बताइएगा। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए आरजे अंजलि के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।
1: You gotta believe me. Liquid music with Mel. Liquid music.

आप सुन रहे हैं अकबर बिरबल की कहानियाँ। एक दिन की बात है, महाराज अकबर किसी गहरी सोच में थे। अचानक अपने विचारों से निकलकर उन्होंने बिरबल से पूछा, यदि न्याय और स्वर्ण मुद्रा में से किसी एक को तुम्हें चुनना हो तो तुम किसे चुनोगे? श्रीमान, मैं स्वर्ण मुद्रा को चुनूंगा, बिरबल ने तुरंत उत्तर दिया। अकबर बिरबल का उत्तर सुनकर हैरान थे। सभी दरबारियों को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। काफी समय से वे बिरबल को नीचा दिखाने की ताक में थे और बिरबल ने स्वयं उन्हें यह अवसर प्रदान कर दिया। अकबर ने कहा, बिरबल, मेरे सेवकों में से किसी ने यह बात कही होती तो मैं मान लेता, पर मुझे तुमसे ऐसी आशा बिल्कुल नहीं थी। बिरबल ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, जिसके पास जो नहीं होता है वह उसी की इच्छा करता है। आपके राज्य में मेरे साथ साथ सभी के पास न्याय है। हाँ, धन की कमी अवश्य है, इसीलिए मैंने स्वर्ण मुद्रा का चयन किया। अकबर ने बिरबल के उत्तर से प्रसन्न होकर उसे एक नहीं, 1000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दिया। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर अकबर बिरबल की कहानियाँ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर अकबर बिरबल की कहानियाँ। अकबर के दरबार में एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज मेरी समझ से बिरबल बुद्धिमान नहीं है, पर हाँ यदि वह मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दे दे तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को मान लूंगा। अकबर सहमत हो गए। उन्होंने बिरबल से कहा कि यदि उसने प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दिए तो वह दंड का अधिकारी होगा। दरबारी ने तीन प्रश्न पूछे, आकाश में कितने तारे हैं, धरती का मध्य कहाँ है, और तीसरा प्रश्न, संसार में कितने स्त्री और पुरुष है। बिरबल तुरंत एक भेड़ लेकर आया और बोला, आकाश में उतने ही तारे हैं जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल है। फिर बिरबल ने धरती पर दो रेखाएं खींची और उनके बीच एक लोहे का सरिया रखकर उसे ही धरती का मध्य बताया। तीसरे प्रश्न के उत्तर में बिरबल ने कहा, पुरुष और स्त्री की सही संख्या तो बताना जरा कठिन है, क्योंकि दरबारी जैसे नमूने तो दोनों में से किसी भी वर्ग में नहीं आते हैं। शर्मिंदा हुए दरबारी ने बिरबल से क्षमा याचना की। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर अकबर बिरबल की कहानियां। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए रेडियो पालमपुर के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर आरजे अंजलि के साथ अकबर बिरबल की कहानियां। एक गरीब किसान ने अपने समृद्ध पड़ोसी से एक कुआं खरीदा। कुआं बेचने के बाद भी समृद्ध व्यक्ति उसका जल प्रयोग करता रहा। गरीब किसान को बहुत क्रोध आया। उसने अकबर को जाकर अपनी समस्या बताई। किसान की समस्या सुनने के बाद अकबर ने उस समृद्ध व्यक्ति से पूछा, कुआं बेचने के बाद भी तुम उस पानी का उपयोग क्यों कर रहे हो? समृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज मैंने तो केवल कुआं बेचा है, उसके भीतर का पानी नहीं बेचा है। अकबर दुविधा में पड़ गए। इस समस्या का निदान उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने बिरबल से सहायता ली। बिरबल ने समृद्ध व्यक्ति से कहा, तुमने किसान को कुआं बेचा है पर पानी नहीं, क्या यह सच है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, जी श्रीमान,

यह सच है। ऐसे स्थिति में अपना जल कुएं में रखने का किराया तुम्हें किसान को देना पड़ेगा, बीरबल ने कहा। समृद्ध व्यक्ति समझ गया कि वह फंस गया है, यहाँ उसकी दाल नहीं गलेगी। उसने किसान से क्षमा याचना की और चुपचाप वहां से चला गया। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर अकबर बीरबल की कहानियां। मस्त रहे, व्यस्त रहे और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

एक दिन अकबर ने बिरबल से क्रोध होकर उसे राज्य छोड़कर चले जाने के लिए कह दिया। सम्राट की आज्ञा मानकर बिरबल चला गया। कुछ दिनों के बाद अकबर को बिरबल की याद सताने लगी। अकबर ने अपने दूतों को बिरबल को ढूंढने भेजा, पर बिरबल उन्हें कहीं नहीं मिला। अतः अकबर को एक युक्ति सूझी। अपने राज्य के गांव में उसने एक संदेश भेजा, 3 माह के भीतर आपको चतुराई से भरा घड़ा भेजना होगा। अगर आप असफल रहे तो हीरे जवाहरात से भरा घड़ा आपको राजा के पास भेजना होगा। राजा का संदेश पाकर गांव के मुखिया परेशान हो उठे। बिरबल एक गांव में छिपा हुआ था। गांव के मुखिया से जाकर उन्होंने कहा, मैं राजा को चतुराई भरा घड़ा भेजूंगा। बिरबल एक घड़ा लेकर अपने बगीचे में गया। लता में लगे हुए एक छोटे तरबूज को उसने घड़े में रख दिया। 3 माह बाद तरबूज ने बड़े होकर घड़े को भर दिया। उसने घड़े को अकबर के पास यह लिखकर भेजा, घड़े को तोड़े बिना चतुराई को निकाल ले। अकबर ने तुरंत पहचान लिया कि यह बिरबल की ही करतूत है। वह स्वयं उस गांव में जाकर बिरबल को अपने साथ वापस ले आए। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर अकबर बिरबल की कहानियां। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

एक सुबह अकबर का दरबार सजा हुआ था। कार्यवाही चल रही थी, तभी एक समृद्ध व्यक्ति ने आकर कहा, मेरे पैसों की चोरी हो गई है। मुझे मेरे सेवक पर शंका है, पर किसने चोरी की है यह मैं नहीं बता सकता। कृपया मेरी सहायता कीजिए। बीरबल ने समृद्ध व्यक्ति के घर जाकर सेवकों से पूछताछ की, क्या उन्होंने चोरी की थी, पर उन सब ने नकार दिया। कुछ पल सोचकर बीरबल ने सभी सेवक को एक एक छड़ी देकर कहा, यह जादुई छड़ी है, अभी यह सब एक बराबर है, पर चोरी करने वाले की छड़ी कल सुबह तक 2 इंच बढ़ जाएगी। तुम सब घर जाओ और कल सुबह छड़ी लेकर आना। अगले दिन बीरबल ने ध्यानपूर्वक उन सभी छड़ियों को देखा। उसे एक छड़ी 2 इंच छोटी लगी। ओहो, तो तुमने ही चोरी की है। ये छड़िया साधारण छड़िया ही है, इनमें कोई जादू नहीं है। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा हो गया और तुमने अपनी छड़ी 2 इंच छोटी कर दी। फिर समृद्ध व्यक्ति ने बीरबल से कहा, वही चोर है, और सजा के रूप में चोर को जेल भेज दिया। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर अकबर बीरबल की कहानियां। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए रेडियो पालमपुर के साथ।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमेशा की तरह करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी ने।
2: लिखते हैं, शिक्षा वो प्रकाश है जो ज्ञान के अंधकार को दूर कर जीवन को सही दिशा देता है।
1: आपका बहुत बहुत आभार इस सुंदर संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का, और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी ने लिखा है। अजीत जी, विमलेश जी, सादर नमस्कार।
2: 1 सितंबर के उमंग कार्यक्रम में बालक बाजी राउत के साहस, संघर्ष और बलिदान के बारे में सुनकर मन भावुक हो गया। इतनी कम उम्र में देश की आजादी के लिए अंग्रेजों का विरोध करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बाजी राउत की शहादत हमें सिखाती है कि देशभक्ति उम्र नहीं जज्बे की मोहताज है। ऐसे वीर बाल शहीद को शत शत नमन।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, नरेंद्र कुमार तिवारी और कृष्ण कुमार यादव जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू और सतीबाई साहू जी का।
1: और वो लिखते हैं, प्रिय उद्घोषक जी, मन ला राम राम जय जोहर पहुँचे। उमंग कार्यक्रम प्रसारित होते एमा बहुत सुंदर ज्ञान वर्धक बात लगत है। शहर में गंदगी से कैसे बचे और सावधान रहे ये सब बात बताते, हमरा बहुत सुंदर लगत। एकर बार बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे।
2: हमें दिनांक 28 अगस्त 2026 का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद आया, जिसमें आपने एक कहानी सुनाई। वो कहानी थी बुद्धिमान किसान। हमें बेहद अच्छी लगी। इस कहानी के जरिए हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हर चीज का बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए। ये सुनवाने के लिए मैं NCERT उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, उमंग कार्यक्रम मुख्य रूप से विद्यार्थियों का शैक्षिक कार्यक्रम है
2: जी।
1: इस क्रम में हम मुख्य रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं एक नई श्रृंखला, भारत के बहादुर बच्चे।
2: जी हाँ श्रोताओं, इस श्रृंखला के 2 एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मेघालय राज्य के 2 ऐसे बच्चों की जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया।
1: तो आज सुनिए श्रोताओं, एक ऐसे बालक की कहानी जिसकी उम्र तो केवल 13 वर्ष थी, लेकिन उसके साहस ने उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया।
2: श्रोता, उस बहादुर बालक का नाम था मेघराज। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना पड़ा। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था।
1: मित्रों, ये घटना है 12 मई 1997 की। मेघराज अपने 6 मित्रों के साथ शिलोंग के प्रसिद्ध एलिफेंट फॉल्स में गया था। बच्चे वहाँ खेल रहे थे कि तभी एक दुर्घटना हो गई।
2: ओ, क्या हुआ था?
1: हुआ ये कि मेघराज के 11 वर्षीय मित्र किशन सिंह का पैर फिसल गया और वो पानी में जा गिरा। किशन तैरना नहीं जानता था, वो पानी में डूबने लगा।
2: श्रोताओं, मेघराज तैरना जानता था। उसने एक पल भी अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ा। उसे मालूम था किशन तैर नहीं सकता है। मेघराज तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया।
1: लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न है मेरे मन में
2: जी,
1: क्या उसे अपनी जान का डर नहीं लगा?
2: अजीत जी, स्वाभाविक तो है, थोड़ा डर तो जरूर लगा होगा, लेकिन उस क्षण उसके सामने अपनी सुरक्षा से बड़ी प्राथमिकता थी अपने मित्र को बचाना।
1: तो विमलेश जी, क्या मेघराज अपने मित्र किशन सिंह को बचा पाया?
2: जी, वो बचा पाया। पानी में डूबते किशन सिंह को बचाने के लिए मेघराज को बहुत संघर्ष करना पड़ा और अंत में उसने अपने मित्र किशन को पानी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। किशन की जान बच गई।
1: तो फिर मेघराज भी बाहर आ गया होगा?
2: नहीं अजीत जी, यही मेघराज की कहानी का सबसे दुखद और हृदय को छू लेने वाला भाग है। मेघराज ने किशन को तो बचा लिया, लेकिन बचाते समय मेघराज का

0: पैर चट्टानों के बीच में फंस गया।
1: ओह,
0: वो स्वयं पानी से बाहर नहीं निकल पाया और उसकी मृत्यु हो गई।
1: जी हाँ श्रोताओ, मेघराज ने अपने मित्र की जान तो बचा ली लेकिन अपनी जान दे दी।
0: एक 13 वर्ष के बालक ने मित्रता की ऐसी मिसाल कायम की जिसे लोग आज भी याद करते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, मेघराज को उसकी बहादुरी के लिए 1997 का नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मरणोपरांत प्रदान किया गया।
0: जी,
1: गणतंत्र दिवस के अवसर पर 22 जनवरी 1998 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति K.R. नारायणन ने उनकी माता को यह पुरस्कार प्रदान किया।
0: जी,
1: आइए श्रोताओ अब विचार करते हैं कि इस कहानी से हमें क्या क्या संदेश या सीख मिलती है।
0: जी, तो सबसे पहली सीख हमें मिलती है, सच्ची मित्रता संकट के समय ही दिखाई देती है। कहावत है ना, सच्चे मित्र की पहचान जरूरत और संकट के समय ही होती है।
1: श्रोताओ, मेघराज की कहानी केवल बहादुरी की नहीं बल्कि मित्रता और जिम्मेदारी की कहानी भी है।
0: बिल्कुल सही कहा जीत जी, बालक मेघराज ने हमें दिखाया कि किसी दूसरे के जीवन को बचाने की भावना कितनी महान हो सकती है।
1: जी, कुछ जीवन लंबे नहीं होते लेकिन उनके कर्म उन्हें अमर बना देते हैं। बालक मेघराज केवल 13 वर्ष जिया लेकिन उसने अपने छोटे से जीवन में ऐसा काम किया जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखेंगे।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी साहसी बालक मेघराज के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: आज का प्रश्न है, बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया?
1: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: जी,
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बीरबल की खिचड़ी।
2: अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे, बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे, गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कह रहा था,
3: मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। हाँ।
2: अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा,
3: यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा।
2: वह मान गया। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा,
3: हैं? तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे?
2: उसने नम्रता से उत्तर दिया,
4: महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था, मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा।
2: बादशाह ने कहा,
3: तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा।
2: वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा, इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वे बोले,
3: चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं।
2: जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा, एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा,
3: बीर

0: पर भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है।
1: बीरबल ने उत्तर दिया,
0: हुजूर, अगर वो व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती?
1: अकबर को बात समझ

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम बीरबल की खिचड़ी, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम मेजर शैतान सिंह।
1: इस कार्यक्रम में भारत और चीन के युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले मेजर शैतान सिंह की जीवन गाथा प्रस्तुत की गई है, और बताया गया है कि युद्ध के दौरान उन्होंने किस प्रकार अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: भारत और चीन का युद्ध अपने चरम पर था। वो दिन था 18 नवंबर 1962 का। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, साए साए करती बर्फीली हवा और लद्दाख क्षेत्र की हड्डियां जमा देने वाली ठंड। रात भर भीषण गोलाबारी के बाद अभी कुछ देर के लिए वातावरण शांत हुआ था। सुबह होने ही वाली थी और भारतीय सैनिक समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट यानी 5,000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर अपनी चौकी पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए थे।
1: ये 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी थी, जिसे लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात किया गया था। बटालियन में कुल 120 जवान थे, जिनके पास ना तो इस भयंकर ठंड से जूझने के लिए पर्याप्त कपड़े थे और ना ही उन्हें बर्फीली जगहों पर युद्ध करने का अनुभव था। और तो और, उनके पास हथियारों के नाम पर पुरानी 303 राइफलें थीं, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बेकार घोषित कर दी गई थीं।
0: अचानक बर्फीली सुबह की धुंध में उन सैनिकों को कुछ दिखाई दिया।
2: रामसिंह,
3: हाँ,
2: वो सामने तुम कुछ देख रहे हो?
3: हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन मशाले लेकर इधर आ रहा है।
2: लेकिन लड़ाई के मैदान में कोई मशाल लेकर भला क्यों आएगा?
3: ये बात तो तुम ठीक कहते हो, ऐसा जोखिम कोई क्यों उठाएगा?
2: हाँ,
3: अरे देखो, रोशनी के ये गोले अब तो और पास आ रहे हैं।
2: हाँ,
3: हमें तुरंत कमांडर को इसकी सूचना देनी चाहिए।
2: चलो, जल्दी चलो।
3: हाँ,
2: उन्हें बता देते हैं।
3: जय हिंद सर।
4: जय हिंद राम सिंह।
3: सर, पहाड़ की पूर्वी घाटी से लगता है कुछ चीनी सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं।
4: क्या कहा? सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं ये दुश्मन की कोई चाल तो नहीं है? समझा। सुनो।
3: जी सर।
4: फौरन मोर्चा संभालो और फायरिंग शुरू करो।
3: जी सर।
4: लेकिन ध्यान रहे, हमारे पास गोलियां कम हैं, इसलिए हमें गोलियां बचा कर रखनी है। बस कुछ एक गोलियां ही चलाना।
3: जी सर।
4: जय हिंद।
3: जय हिंद सर।

0: थी, जिन्हें चीनी सैनिकों ने स्थानीय याक पशुओं के गले में बांधकर भारतीय सेना की ओर भेजा था।
1: 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर राजस्थान में एक सैनिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम शैतान सिंह भाटी था। उनके पिता आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी थे। बचपन में उनकी बाल सुलभ शरारतों के कारण संभवतः उनका नाम शैतान रख दिया गया हो, लेकिन निजी जिंदगी में वो बेहद विनम्र और सौम्य व्यक्ति थे।
0: शैतान सिंह ने जोधपुर स्थित राजपूत उच्च विद्यालय से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। सन 1943 में स्कूल की पढ़ाई के बाद वो सिंह जसवंत सिंह कॉलेज गए और स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1 अगस्त 1949 को वो एक सेना अधिकारी के रूप में जोधपुर रियासत की सेना में शामिल हो गए। अपने सैन्य जीवन में विनम्रता और कार्य कुशलता के कारण वो अफसरों और सैनिकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे।
1: तो आइए एक बार फिर से चलते हैं उसी युद्ध के मैदान में, जहां 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात थी। ये जगह थी रेजांग लाह की घाटी। सामरिक दृष्टि से भारत कमजोर स्थिति में था। चीनी सैनिक सैकड़ों की संख्या में पूरी तैयारी के साथ बेहतर हथियारों से लैस थे और उन्हें बर्फीले क्षेत्र में युद्ध करने का भी खासा अनुभव था। जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या उस चौकी पर मात्र 120 थी।
0: ऐसे में चीनी सेना से युद्ध में मुकाबला करना भी आत्महत्या करने के समान था। और आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने हल्की मशीन गनों द्वारा भारतीय पोस्ट पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह सतर्क हो गए और अपने साथियों को मोर्चाबंदी करने का आदेश दिया। और जैसे ही चीनी सैनिक निकट आए, भारतीय सैनिकों ने उन पर लाइट मशीन गन, राइफल्स, मोर्टार और ग्रेनेड से हमला कर दिया और कई चीनी सैनिक मार गिराए।
2: जवानों, हमारे पास दो ही विकल्प हैं, मरो या मारो। तुम सब भारत माता के बहादुर सिपाही हो। तुमने अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने की शपथ ली है, तो आगे बढ़ो। हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। फायर!
3: साहब, साहब वो देखिए, घाटी के दूसरे रास्ते से दुश्मन के बहुत से सैनिक इधर ही आ रहे हैं।
4: फतेह सिंह, अभी उन्हें और पास आने दो। जब पास आ जाएं, तो हथगोलों का इस्तेमाल करो।
3: जी साहब।
0: चीनी सेना के सिपाही भारतीय सेना के प्रचंड प्रहार के सामने टिक नहीं सके और पीछे हटने लगे। उनके बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन शीघ्र ही चीनी सेना ने रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने घाटी में ऊंचे स्थानों पर बनी चौकियों से भारतीय चौकी पर जबरदस्त बमबारी की।
1: भारतीय सैनिकों के बंकर नष्ट हो गए। उनके पुराने हथियार चीनी सैनिकों के नए हथियारों के मुकाबले बेकार साबित हो रहे थे। भारी संख्या में भारतीय सैनिक मारे जा चुके थे। चीनी सैनिक घोड़ों और याक पर और अधिक हथियार लाद कर ले आए और आक्रमण जारी रखा।
0: लेकिन मेजर शैतान सिंह भला हार कहां मानने वाले थे। उन्होंने इस दुर्गम परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया।
2: जितना असला है पूरा इस्तेमाल करो। मैं तुम्हें और पक्षा लाके

और सैनिकों ने मोर्चा बांधकर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन आश्चर्य, वो मशालें रुकी नहीं, वो आगे बढ़ती रहीं। जब वो बिल्कुल पास आ गई तो साफ साफ दिखाई देने लगा। पता चला कि वो मशालें नहीं थी, लालटेन।

0: उधम सिंह।
1: जी सर।
0: एलएम जी सवाल हाथ पे छोड़, फायर कर, राइट साइड पे फायर कर।
2: वो उनका साहस बंधाते और उन्हें लड़ने मरने के लिए प्रेरित करते। गोलियां कम थी, ठंड की वजह से उनके शरीर जवाब दे रहे थे। अपनी मशीन गनों और बंदूकों के ट्रिगर पर भीषण ठंड के कारण उनकी उंगलियां काम नहीं कर रही थीं। चीनी सैनिकों से ये बचे हुए जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक एक जवान ने लोहा लिया। उस दिन चीन की प्लाटून के बहुत से सैनिक मारे गए।
3: मेजर शैतान सिंह को भी कई गोलियां लगी थी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए थे।
4: अरे साहब, आप तो बहुत घायल हो गए हैं। कितना खून बह रहा है। आपके दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं।
1: राम सिंह, मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए एक मशीन गन लाओ। मशीन गन लाओ।
4: जी साहब, अभी लाया। अरे हुकुम भाई, जरा साहब के लिए एक मशीन गन ले आना।
1: अच्छा।
5: सर, ये रही मशीन गन।
1: हुकुम सिंह, एक काम करो।
5: जी।
1: गन के ट्रिगर को एक रस्सी से बांध दो।
5: जी सर।
1: मैं छोड़ूंगा नहीं दुश्मन को।
5: जल्दी करो।
1: जी सर। बांध दिया सर। ठीक से बंध गई रस्सी ट्रिगर के साथ।
5: हाँ सर, बांध दिया।
1: इस रस्सी को मेरे बाएं पैर के साथ बांधो। जल्दी टाइट करके, खींच करके, खींच के इस तरफ निकल। हील नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल।
5: जी सर।
1: भारत माता की जय। भारत माता की जय।
2: कहते हैं कि मेजर शैतान सिंह ने मशीन गन को दुश्मन के आने की दिशा में निशाना लगाकर जमीन पर जमा दिया और रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन लगातार खून बहने से मेजर शैतान सिंह अब अर्धमूर्छित अवस्था में आ गए थे। कुछ सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बड़ी चट्टान के पीछे ले गए।
4: संभल कर, संभल कर।
1: सब यहाँ सर टिका लीजिए।
4: सर
1: ऐसे कालिका माता की जय।
3: वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में उनके प्रिय कमांडर मेजर शैतान सिंह चीनी सैनिकों के हाथ लगें। मेजर शैतान सिंह को कभी कभी होश आ जाता था।
1: छोड़ना नहीं, आखिरी सांस। फायर, फायर।
3: सैनिक बारी बारी से मेजर शैतान सिंह को अपनी पीठ पर लादे हुए उबड़ खाबड़ बर्फीले रास्तों पर चल रहे थे कि तभी चीनी सैनिकों की एक और टुकड़ी दिखाई दी जो उनकी ओर आ रही थी। मेजर समझ गए थे कि अब उनका सफर यहीं तक है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया।
1: साथी, हाँ, हमें चीनी सैनिकों ने देख लिया और वो इधर ही आ रहे हैं। मेरी चिंता मत करो, मुझे यहीं छोड़ दो।
5: साहब,
1: तुम लोग आगे निकलो।
5: साहब, ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ऐसा नहीं हो सकता साहब। हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे साहब।
1: समझो, अगर मुझे लेकर चलोगे तो पकड़ लिए जाओगे। अपनी जान बचाओ।
5: नहीं साहब।
1: क्या मालूम चीनी सैनिक तुम लोगों से कैसा सलूक करे। मुझे यही मेरे हाल पर छोड़ दो।
5: नहीं साहब,
1: नहीं। आदेश, इट्स एन ऑर्डर
5: सर।
1: अलविदा, अलविदा दोस्तों।

0: मन से सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह को वहीं छोड़ दिया और आगे चल दिए। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। 1963 के फरवरी महीने में भारत चीन युद्ध समाप्त हो गया। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और चरवाहों का एक दल भेड़ों के झुंड के साथ चुशुल में रेजांगला घाटी से गुजर रहा था, तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। चारों तरफ भारतीय सैनिकों के मृत शरीर बिखरे पड़े थे। उनके हाथों में हथियार थे, चेहरे विकृत थे और आंखें आसमान की तरफ ताक रही थी।
1: उन चरवाहों ने तुरंत भारतीय पोस्ट पर अधिकारियों को सूचना दी।
2: साहब, मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है।
1: भारतीय सेना ने तुरंत कार्यवाही की। सेना के जवानों के साथ वहां रेड क्रॉस सोसाइटी भी थी। उन्हीं दिनों एक और चरवाहे ने सूचना दी कि एक चट्टान के नीचे कोई दिखाई दे रहा है। खोजी दल उस चट्टान के पास पहुंचा। वहां किसी और का नहीं, मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था।
0: उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके गृह नगर जोधपुर लाया गया और पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

0: युद्ध के शहीदों की स्मृति में रेजांगला घाटी में एक स्मारक बनाया गया है। आज भी बर्फीले पर्वतों के जंगली घोड़े कियांग और नीली भेड़ों के झुंड उस स्मारक के आसपास घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो वो सैनिकों की याद में बने इस स्मारक की प्रेम से रखवाली कर रहे हैं।
1: कई बार बर्फीले पर्वतों पर साए साए चलने वाली हवाएं कहीं दूर से बुरांश के फूलों को लाकर उस स्मारक पर डाल देती हैं, जैसे श्रद्धांजलि दे रही हूं।
0: हालांकि भारत युद्ध हार गया था, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांगला पर ही हुआ था। चीन के करीब 1,800 सैनिक इस जगह मारे गए थे। ये एकमात्र जगह थी जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया था, और ये संभव हुआ था मेजर शैतान सिंह के असाधारण शौर्य के कारण।
1: परमवीर चक्र से सम्मानित भारत भूमि के इस पराक्रमी महायोद्धा को हमारा सलाम।
2: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना,
3: अर्शद,
2: सौम्या,
3: प्रसून
2: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
3: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग,
4: उमंग। તમે સાંભળી રહ્યા છો 90.4 FM રેડિયો પાલનપુર। હું પ્રિયરાજ સૌ બાળ મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું બાળ સભામાં।
5: ઉત્તર ગુજરાતની આ વાત છે। અરવલ્લી પાસે આવેલો એક જિલ્લો, જિલ્લાનું નામ બનાસકાંઠા, આપણું બનાસકાંઠા, મારું તમારું આપણા સૌનું બનાસકાંઠા। આ બનાસકાંઠામાં એક તાલુકો જેનું નામ પાલનપુર। જ્યારે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રનું વિભાજન થયું એ સમયગાળાની આ વાત છે। લગભગ 1960-61 ની આસપાસ પાલનપુર જિલ્લાનું વડુ મથક એટલે કદાચ કહી

पक्का पालनपुरी नी ओळख इतले ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडिओ पालनपूर कम्युनिटी रेडिओ स्टेशन.

वाह, तो आज ही संपर्क करो रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर 95 96 88 पर व्हाट्सएप करीने के बजी सोशल मीडिया ना कोई पण माध्यम मा टेक्स्ट मैसेजेस थी। मस्त रहो, व्यस्त रहो, सांभळता रहो रेडियो पालनपुर।

मैं हूं करण सिंह और इस हफ्ते मैं लाया हूं आप सभी के लिए पोइट्री का सबसे खूबसूरत रूप गजलें, मोहब्बत का सबसे शीरी अंदाज यानी मीठा अंदाज। तो चलिए पहले समा बनाए कुछ गजलों के साथ।

वैसे गजलों की जो परिभाषा है वो बड़ी सरल है, दो प्रेमियों की बातचीत। बस फर्क इतना है कि उस बातचीत को सिंपल शब्दों के बजाय थोड़े अच्छे अच्छे दिलकश लफ्जों के साथ खूबसूरत अंदाज में बयां किया जाता है, राइमिंग करके, वरना बातचीत में गहराई कैसे आएगी, खूबसूरती कैसे आएगी, दिलकशी कैसे आएगी। हाँ, एक बात और, गजलें जो होती हैं वो अशआर से बनती हैं। अशआर यानी कई सारे शेर। शेर तो आपको पता ही है क्या होते हैं, वही दो लाइनों वाले, जिन्हें आपने भी कई बार पढ़ा होगा, फिर किसी लड़की को या लड़के को फॉरवर्ड भी किया होगा, शायद ये भी कहा होगा कि मैंने लिखे हैं तुमको सोचकर। तो जो गज़लें होती हैं वो कम से कम पांच शेर को जोड़कर बनाई जाती हैं, जैसे कि ये वाली फ्रॉम द फिल्म निकाह।

ऐसे जब गजलें इजाद की गई थीं, इन्वेंट की गई थीं, तब वो सिर्फ इश्क मोहब्बत की बातें करती थीं। मगर जैसे जैसे वक्त आगे सरका, गजलों ने भी अपनी मियाद यानी अपनी सीमा बढ़ा दी। आखिर बाकी चीज़ों को वो भी कब तक नज़रअंदाज करती। तो गज़लों ने फ़लसफ़े को यानि फ़िलासफ़ी को भी इंक्लूड कर लिया, फिर उसने समाज को लेकर, उसकी कड़वी हकीकतों को लेकर भी मुँह फट होना शुरू कर दिया। इनफैक्ट अब तो एक सिंगल गज़ल में शायर हर शेर के ज़रिए मुख्तलिफ ख्याल यानि अलग अलग थाट्स भी बयां कर देता है। तो आइए आपको भी ऐसी कुछ गज़लें सुनाते हैं जिनमें कहीं पर इश्क है तो कहीं पर फ़िलासफ़ी। ये

और अब चलिए बात करते हैं गजलों के स्वरूप की। तो अशार क्या होते हैं ये तो आपको बता दिया, शेर क्या होते हैं ये भी आपको बता दिया। इनफैक्ट जो पहला शेर होता है एक गजल का उसे कहते हैं मतला, और हर शेर में चूंकि दो लाइन होती हैं तो पहली वाली को कहते हैं मिसराए उला और दूसरी वाली को कहते हैं मिसराए सानी। अब आपने कई बार एक शेर में किसी शायर का नाम भी सुना होगा, तो उसे हम अंग्रेजी में पेन नेम बोलते हैं जिसे उर्दू में तखल्लुस कहते हैं। इनफैक्ट मिर्ज़ा गालिब साहब को हम गालिब नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि उनका तखल्लुस गालिब है, वरना उनका असल नाम तो असदुल्ला खां साहब था। अब जैसे कि उनका एक शेर आपको सुनाता हूँ कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और दूसरी बात ये कि जिस शेर में एक शायर अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं मख्ता, MAKTA नहीं MAQTA, फ्रॉम दी एपिग्लॉटिस। और दूसरी चीज ये कि जो शेर एक गजल का सार कहता है या उसका कंक्लूडिंग शेर होता है उसे कहते हैं हासिले शेर। कई गज़लों में आपने एक सिंगर को ये कहते हुए सुना होगा कि और अब सामीन मैं इस गज़ल का हासिल शेर अर्ज करना चाहूँगा, और कई बार आपने उस शेर के बाद लोगों को मुकर्रर मुकर्रर कहते हुए भी सुना होगा। तो मुकर्रर का मतलब होता है वंस मोर वंस मोर। तो चलिए अब हम भी यहाँ कुछ बढ़िया गज़लें सुनते हैं वंस मोर।

0: यूं तो हिंदी फिल्म म्यूजिक में गजलों का आना जाना काफी वक्त तक लगा रहा। कई सिंगर्स हैं जिन्होंने गाए, जैसे तलत महमूद हैं, सुरैया हैं, केएल सहगल साहब हैं। इनफैक्ट मदन मोहन जी ने भी कई गजलों को कंपोज किया। लेकिन गजलों को असली मकबूलियत देने में जिन लोगों का हाथ है, उनमें अव्वल तो हैं मेहदी हसन साहब, उसके बाद गुलाम अली साहब भी आए, फिर जगजीत सिंह जी आए, जिन्होंने गजलों में कुछ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स शामिल किए और उस वजह से गजलों की रीच काफ़ी बढ़ गई। इनफैक्ट उन्होंने कई गजलों में जो मुश्किल उर्दू लफ्ज थे उनको सिंपल हिंदी शब्दों के साथ रिप्लेस करके गाया, जिससे गजलें आवाम तक पहुँच पाईं। फिर पंकज उधा साहब भी आ गए, उसके बाद और भी कई सिंगर्स आए, जैसे तलत अजीज़ हैं, भूपेंद्र सिंह, मिताली सिंह, और तब से ये सिलसिला आज तक चलता रहा है। वैसे अब जो अगला गीत मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसका जो मुखड़ा है वो दरअसल मिर्ज़ा गालिब साहब की एक गज़ल से लिया गया है, जो कुछ यूं थी कि जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। तो गुलजार साहब ने इस मुखड़े को लिया और इसके आगे अपनी पंक्तियां जोड़कर इसे एक मुकम्मल गीत की शक्ल दी। तो चलिए सुनते हैं इसी गीत को भूपेंद्र जी की आवाज में, और उसके बाद कुछ और गजलें यहीं।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अने सांभता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

बीच में बैठा था मैं, सब बैठे थे आजू बाजू, इतने में बंदूक चली भाई, गांव में आए डाकू। हाँ

मैं घर से बाहर निकला सब मेरा नाम पुकारे, मार के लाठी जमी पे जटने डाकुओं को ललकारा, वो थे चार अकेला मैं।